से मस्त की पूरे खोड़ा से घड़ोली तेरी खोद दे चमड़ी फेस तेरे की बकचोदियां हैं बातें घर की देखा मुझे तो यहां बंदियों की सांसें चढ़ गई टांग फिसल गई बाप बोले बेटी बाहर निकल गई हाथ से वो कर नहीं सकता कुछ भी रहने दे जाके बैठ के बार पैक पी के दिमाग स्ट्रेस सीधा दीवार पे ब्लेस्ड हूं या बीमारियां दोनों तेरा तेज है मेरा सो बोले रे मेरा फ्लो आके बोले मुझे के नो जैसा समाज में उसी का आईना वो बंदा था ब्रेवा वो फट्टू है भाई साहब वो बंदी थी